ना किछ आएबो ना किछ जाएबो, राम की दुहाई। ऐसा होया क्यों? क्योंकि अकाल पुरख ने मेरे ते कृपा की थी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, कहते ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड दे विच है, कहते ने सोई पिंडे ओही अंदर है। फर्क सिर्फ इतने, विज्ञान बाहर खोजद, ज्ञानी अंदर खोजद। तुसी देखे ना, विज्ञान ने बाहर खोज के हर एक गल नू कितने हजारों साल पहले दसना कीता है। ते मैं एक गल तुहाडे समक्ष रखदे आ, विज्ञान अज जो कुछ खोज रहा है सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लैके विज्ञान ने खोजना शुरू किया है। इहदा भाव सारा विज्ञान ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर जो बाणी बोलती है विज्ञान उन्हों लैके तुर पैंदा है। हुण आ देखो गल किसी होर पास है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड विच है वह मनुख तेरे अंदर है, लेकिन मिलता किन्नू है? जो खोजे सो पावे, जिन्हें खोजे है, जिन्हें लभना शुरू किया है उनू परमात्मा मिल जाता है, ते जिन्हें लभया ही नहीं उनू परमात्मा किथे मिलेगा, ते वो पूजा किवें कर सकता है? अंत विच पीपा जी कहिंदे ने, प्रण पीपा प्रणवे परम तत् है, पीपा प्रणवे परम तत् है। वो परम तत् परमात्मा अकाल पुरख आप ही सब कुछ है, पर मिलदा गुरु दी कृपा नाल है। सतगुरु होए लिखा वे, जब तक कि सतगुरु दी कृपा ना होवे, गुरु दी बख्शिश ना होवे, वो परमात्मा नहीं मिलदा। इसलिए इस दर ते आके एको गल कमाइए, जो गुरु नानक साहब कह रहे ने, सारे मिलके आखो जी।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनों हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

हर साचे भावे स्वा पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह हर

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा ओ पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हां। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगतावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करम वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है, जब तेरे नाल मेरा प्यार है तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई? उस प्यार दे नाल ते मेरिया तमाम भुखा कहते हैं वह पूरिया हो गई हैं। तू मेरो प्यारो, इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती, कोई शख्सियत, कोई बींग मौजूद है जिस दे नाल महाराज जी का

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते होंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछीए, सच्चे पातशाह साड़ी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह करे? हुण सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साढ़े ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? ये किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो वे नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दियां सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां ने, नाम ही नहीं। जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिहदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिहदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहंदे हन तेरे अत्यंत गुण हन, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, कहंदे तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हां, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हां। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी दा उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप ते कई दफा तरस करदे हां कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है। वट टू डू विद इट वी डोंट नो। Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. पर महाराज जी आखदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करदे हन कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहंदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नूं कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साहिब सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वह एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनु जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी नु उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं, कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमखना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेमांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है, और कुछ चाहता ही नहीं है, यह है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है, केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ए ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलाड़ियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिए है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखा है, ते महाराज जी आखते हैं उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहते ओ प्री दा प्रेम ही चाहिए है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार चाहिए है, तेरा प्यार चाहिए है, कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए है, कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बेन, आओ सारे आखिए ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है, साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मों रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नु, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखते हैं जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहाय।

any number. A circle surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसने यहां सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म मया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली पूर्ण बिखुटे नानता पूर्ण में हो गया पूरे पदार्थ ने भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण निकुटे नाम का पूर्ण सच और सिद्ध भी है दक्ष पातशाह में सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा है उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलन वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले मतलब फरमाते हैं सच्चे मार्ग चलते हैं उस तत् करे सच जरा सच पिया बोलता है और दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता है और जहर पिया सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पैदी फिर सामू जरा

हम फल है वो प्राप्त इसी प्रकार शासन उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरु मंत्र जो वाहगुरु है ये दरगाह ही टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते भी सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां नू त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह बनाए दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है महाराज पता दसो कितने वीर उसके कौ कितने सब बॉम्बे जाना मीलों का पता ये भी पता भी इतने समय के बाद पहुंच गए थोड़े जे मीलों वास्ते इंसान टिकट भी खरीदता है सीट भी बुक कराता है कपड़े भी नाल ले लेंदा है बिस्तरा भी रस्ते टेलीग्राम भी दे देता है दोस्तों को मैं प्लांट ट्रेन से आ रहा तो मैं स्टेशन से थोड़े जैसा हजूर कहते हैं कि दिन तो लंबे पेंडे महाराज किन्ने वील है तो हजूर फरमाओ देते

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

मन क्यों बहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइयां आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कोई संगत नवी आई हुई है, केवल बोल के लंघदे हां। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी, धरती के समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तो चले गए। एक गुरु नानक दसवें जामे तो बाद भी

من کیوں بیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی केवल झोली नहीं भर रही वो अगों झोलियां भरन वाला भी बन सकता है. गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की छेवीं विशेषताई इथों तक नहीं लिमिट के तू पढ़ेगा तू जुड़ेगा तो तेरी झोली भरेगी. नहीं ये बाणी तेनू अगों झोलियां भरन वाला भी बना सकता. किन्ने जिक्र दास दे सामने आ रहे ने. अमृतसर जी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का चुगाड़ दे कोल ही खलो जाओ ते मेरे ख्याल एक मिंट विच कितने शरीर अंदर जांदे ने. बाबा दीप सिंह जी दे दर दे उत्ते गुरु प्यारेओ इशारा लेना है कौन ने. बाबा दीप सिंह जी एक सिख ही ने ना कलगियां वाले दे पर बाणी नाल एहो जे जुड़े के चाबियां ही मिल गईयां दूजियां दियां झोलियां भरन दे. दमदमी टकसाल की किताब च लिखिया 101 पाठ जपजी साहब बाबा दीप सिंह जी का नितनेम. बाणी ने खुराक बनाया चाबियां मिल गई. अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी. बाणी इनी कृपा है अगों झोलियां भरन लई बना दे झोलियां. संगरूर तो एक शरीर जे उन्हें वचन सुनाया प्यार संगरूर तो किसे ने उदे ते केस करता उन्हें एक शरीर नू कुछ मैंबरां नू उदे घर भेजिया दो महीने बाद भी केस तू वापस लै लै जो तेरा खर्चा आया वो दे देने झगड़ा चंगा नहीं. उन्हें क्या ठीक है खर्चा दे दो मेरा भी किन्ना आया 86,000 खर्चा आया उन्हें दे दिता 86,000 खर्चा. कहन लगे राजीनामा लिख लो. कहन लगा लिखण दी लोड़ नहीं गुरु गोबिंद सिंह जामा ने तुहाडा साडा समझौता हो गया राजीनामा हो गया. पर अंदर कोर्ट ध्यान देना केस वापस ना ले. ओ शरीर दी घरवाली ने बाबा दीप सिंह दे दर ते 43 चुपहरे सुख ले. सच्चे पातशाह हुण तू कृपा उन्हें वचन सुनाया छेवां चुपहरा सी ते अदालत वल्लों ही केस जेड़ा ना जी ओ खत्म करता भी ये बनदा ही नहीं. आखो सतनाम साडा ना निश्चा बन गया बाबा दीप सिंह दे दर ते. ध्यान दे 43 चपहरे

लागू। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐन सुपागू। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हरक सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना। जन नानक के खेल कठन है किनु गुरमुख जाना। जन नानक के खेल कठन है किनु गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस। होए सबना की रैन का ता आओ हमारे पास।

के बहुत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

छह उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। जैन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा,

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

जे भाई सत्ता समुंदरां दे पानी भी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावे।

धन गुरु अर्जुन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ये मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पबीए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

city is going to have Spatsha. I'm Guru Amar Das Spatsha. Jithe Jota Jagares. Arapi Jot Duniya Nupada. A Janana Hari Guru Dan Teka. Jodi Yage. जागत जोत जगे ये जोत सदा जगदी है जो मालिक दे दर पे आ गया ओदे अंदर भी जोत जगदी दुनिया भी जोत बुझ जाती है सच दी जोत जगदी है तो अंदर भी जगदी है।

एक निष्काम सेवा है, एक साकाम सेवा। साकाम सेवा जे करेगा तो एक अठियानी रोज मिले, तो दो बड़े का प्रशादा लंबे, तो जे निष्काम सेवा करे तो पता नहीं तन गुरु अमरदास पातशाह तन की करेगी। यह तेरी मत साकाम सेवा कर रही है या निष्काम सोचा कि सेवा कर, साकाम सेवा ना रखिया नहीं मिलेगी। जिन्हें लखा गिने उन्होंने वास्ते अठियानी की चलती, तो सोचा मना चलो साकाम सेवा कर दे, की पता गुरु कृपा कर ही दे, सेवा कर तो होए नहीं कर, इसको हो प्राप्त। असी तो साकाम सेवा कर दे, गुरुद्वारे की मत्थे टेक दे, पातशाह पुत दे दो, माया दे दो, कारोबार दुनिया दे पता गुरु दे दें, पर बाबा जी बचन कर दे सन भागा वाला वो गुरसिख है कि वो निष्काम सेवा। और उसाई मैं भी गंगा रामा फिर सेवा कर दू, फिर लंगर ही चला जाए, झूठे भांडे मायने शुरू कर, फिर पैरी सास गंगा राम लंगर ही चला गया, खराब सास संगे झूठे भांडे मारे, कदे कदे मन ख्याल आ जाता है मन गुरु नाल कोई बचन ही नहीं है, दर्शन ही की थी। कदो भागा वाला दिन आएगा जो गुरु मेनु दर्शन देवेगा, ते अपनी रसना तू कवेगा गंगा राम तेरी सेवा प्रवान है कुछ मंग ले, वो दिन खड़ा पर रात दिन सेवा करी जाता है, इसे वेले मन निराशा वाल भी चला जाता है, पर फिर गंगा राम अपने मन को समझाता है मन गुरु समर्थ है अंतर्यामी कि ला ना पाए सेवा करी जा, फिर कदे ना कदे नाड़े भांडे मांगता है नाड़े गंगा राम

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो तरी है, तदे का मार्ग मकसद गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाते, गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए, कदों भागा वाला दिन चाहिए। ये धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर, जिस तरह बख्शिश हो गंगा राम की सेवा थाए करा सामान, क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं, आखो सही दुख की एक घड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह समा, यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह जी आप सारे मार्ग ने मेहनत तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का भी करो, इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए। गंगा राम दे सदके सानू भी दीदार का किड़का मिल जाए, फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया, पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है। हजूर फरमाते जान के सिमर सब कुछ पाइए बिरथी, उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम जी किस तरह गुरु ने अमृत साढ़े ताई साढ़ी जीवन का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना वड़ियाई कि नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कामना समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी, क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो धन गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बता, पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश ताइ बाबा ने सिंह जी उसे चौबी घंटे का सत्संग है नानक डेली कोई आए चाहे पूर्णमासी का समाज खास होता है नॉर्थ इंडिया में हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता है कि साई की प्रेरणा अनुसारों पूर्णमासी थोड़े को आई ती जुड़े हुए थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावगा सुरत नारंग सर पहुंचा के दर्शन कर और घर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो। आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए, यही अरदास करिए पहले अमरदास तेरी तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह, नहीं तो असि कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां ते माया कई रूप धार के पिछड़ी किसे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नूं पा गए आ खुश तो गुरु नूं पा गया तो जीवन सारा का सारी मिलके करिए उस तो प्राप्ति करिए। धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम साहे गुरसिख माई पाई, धन गुरु राम का अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਨਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

तड़पा तीरे हो लगन फिरो बन माही तट तीर तब तटी पमियो दुखदा सुख कहनाही मन कामना तीर्थ जाय बसियो शिव करो ताराए मन की मैल न उतरे ये लख जतन कराए संत कामनी हैवर गैवर बहुत दान दतारा अनबद्धर तुम बहु अर्पय नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन जंगा।

चरने अर्शो शंगन जया। राजलीला राजन की रचना करया हुकुम अपारा, सृज सौणी चंदन शोभा नाक कोर का द्वारा। हर तीर्थ साध संगत है सिर कर्मन के कर्मा, कौनान कथित पयो पराप जिस पूर्व लिखे का दहना। तेरो सेवक यह रंग माता अयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। तेरो सेवक यह रंग माता अयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता।

0: वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के देखन काज बने हो। सारसुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा ना बिनती ना तो तुमको सब नय कर हो। बेसुमार बे अंत स्वामी तेरो अंत न
1: कूट भराज हमारे खंडो
0: कूट भराज हमारे खंडो
1: अनक विधि समझाओ
0: अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जिहदी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करते ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल पत्तियां निकल आईया। ता इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना। इस बच्ची दे मन दी ये भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया आनंदपुर साहब जाण नू भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वाल देखिया, सोहना फुल खिड़ रहे है। उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणा सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणा फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणा विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

जिस तरह भी आया उस बच्ची दी बेनती अपनी कलम द्वारा दास ने इस तरह लिखण दा यतन कीता। इस नूं कविता समझो या उस बच्ची दे मन दा वैराग वलवला समझो। मानो ओ बच्ची हाथ जोड़ के अरदास पई करदी है, मैनू तेरे नाल इन्ना ही प्यार मेरे सतगुरा, नीले वाले आ, बाजां वाले आ, फौजां वाले आ।

बाग दा मालिक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहन लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर इहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मान के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नूं फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई कि नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नूं हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने ऊंची सारी एक तरला लिया, ऊंची सारी आखिया, हाय ना तोड़ वीर वे, है वीरा फुल ना तोड़ी। इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी, तरला सी, कांबे दा धीरदा कंब गया। उदा हाथ पिछा आया, पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा, कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा, तैनू क्या फुल तोड़। कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते, हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती, ज्यों उथू भजी कहिंदे आ रही है, हाए ना तोड़, हाए ना तोड़ वीरवे। ते कामा उहदा हथ फिर पिछे आ गया। जसवंत राय गुस्से विच कहन लगा, ओए कामिया तू नौकर मेरा है या उस लड़की दा, तेनू क्या फुल तोड़। मालक दा हुक्म कामे ने ते मनना है। उस कामे ने फुल नूं फिर हथ पाया, बच्ची भी कोल पहुंच गई। इधर कामे ने फुल तोड़िया, उधर उस बच्ची ने आखरी वरी कहा, हाय ना तोड़, कहिंदी होई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया, उस अपने महल नूं मुड़ पिया। पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल फड़े है, वह भी तुरदा जा रहे है, पर उस नूं इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है, हाय ना तो, हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा, कामे ने ओ फुल सामने रखिया, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़ कहिंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया। कहिंदा जा रहा, मैं अपराध कीता, फुल नहीं तोड़िया, एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी, नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया, पर उसके कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तो, हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है, ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच, ताज देव सिख अपनी बच्ची मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नूं मंजी ते पाए है। देव सिख इहदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई, सारा दिन बीत गया, पर बच्ची नूं होश कोई नहीं।
राजस्व अंतराय तान पदार्थ बहुत है, गुरु तू बेमुख है, अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु ठीक भी नहीं समझता। ए नाने हथियार चुके ने, लड़ाइयां लड़दे ने, इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है। पर अज इस नु चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया, हे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने, किसे भी जात दे, किसे भी मजहब दे, इस सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने, कोई किसे रंग दा फुल, कोई किसे रंग दा फुल, फुल आसरे ने, महक रहे ने, खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है, हर फुल दे सराहणे एक तुर्क पठान खड़ा है, हर एक फुल दे सराहणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली, उन्हां तुर्का पठाना ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। फुल लहू लुहान हो रहे ने, ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा, एक गर्जवी आवाज आई, खबरदार ठहर जाओ, हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी, वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठिठंबर गए, कुछ मारे गए, कुछ भज गए, कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए, संभल गए, सुधर गए। फिर आवाज आई, रख लिया, रख लिया। ए नजारा देख के जसवंत राय दी अख खुल गई, सारा शरीर परसीनी नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया, जसवंत राय कहन लगा, भलिए लोके मैं बड़ा बेचैन हां, इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्या, ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी, जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओह कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़दे ने। पर स्वामी जी, साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके, क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखिया है, ये हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कईआं जातां दे, ये दुखी ने, क्योंकि तुरक मुगल जुलम पै करदे ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी, हिंदू धर्म दी रख्या वास्ते, हिंदुस्तानियां दी रख्या वास्ते, मजलूमां दी रख्या वास्ते, जेड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी, सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तो बेमुख हो गए हैं। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते, वो अपने वास्ते नहीं लड़दा। और मैं भी पैसे दे हंकार विच गुरु तो दूर हो गया, पर हुण मैं भी
आनंदपुर साहब जावांगा, पर चल पहला दियो सिख दे घर चलिए, देखिए तां सही उस बच्ची दा की हाल। जसवंत राय अपनी घरवाली दे नाल ओ फुल लैके दियो सिख दे घर वल तुर पिया। मन विच पछतावा कि मैनू की पता सी ओ बच्ची फुल दे नाल इन्ना प्यार कर।